0: नहीं गे जांगर जीतिया हम ओम स्वस्तियस्तु
1: स्वस्तियस्तु पामान
0: या पानोचें
1: Bangli.
0: Inge.
1: Ngareng Paman.
0: Terus.
1: Upo sinom
0: eh.
1: Om swastiastu.

0: सारियों सिर वाटी देवी तारे हलुगो हलुगो पिता लुगो सिर खाखान तो आगे के दुरासे लावन सिर सांग संपत्ति
1: कने दंगी रंग रंग दंगी
0: हलुगो हलुगो हलुगो